नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि सुमिरन में मन नहीं लगता। हम मुंह से नाम तो लेते हैं पर ये हमारी इंद्रियां कहीं और भागती हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस स्थिति के बारे में सोचा है जब शरीर का कण कण उस परमात्मा को पुकारने लगे? आज कबीर साहब हमें सुमिरन की उस ऊंची अवस्था के बारे में बता रहे हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान को एक अनमोल रत्न मिल जाता है। श्रोताओं, आज का सूत्र थोड़ा गहरा है। कबीर यहाँ हमारे शरीर और मन की शक्तियों को एक साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। पंच संगी प्यू प्यू करें छटा जो सुमिरे मन, पंच संगी प्यू प्यू करे छटा जो सुमिरे मन, आई सुरती कबीर की पाया राम रतन। पंच संगी पिऊ पिऊ करे छटा जो सुमिरे मन, पंच संगी

श्रोताओं, कबीर साहब इस दोहे में एक अद्भुत दृश्य रच रहे हैं। वह कहते हैं, पंच संगी प्यूं प्यूं करें। ये पंच संगी हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब ये पांचों संसार के विषयों को छोड़कर अपनी पीव यानी प्रियतमा प्रियतम परमात्मा की पुकार करने लगती हैं, जब ये पांचों संसार के विषयों को छोड़कर अपने पीव यानी प्रियतम परमात्मा की पुकार करने लगती हैं, तो एक संगीत निर्माण होता है। और इसके साथ छठा जो सुमिरे मन, जब पांचों इंद्रियां शांत होकर भीतर की ओर मुड़ती हैं, तो छठा तत्व यानी हमारा मन भी उसी सुमिरन में डूब जाता है। जब इंद्रियां और मन एक ही दिशा में लग जाते हैं, तब क्या होता है? आई सुरती कबीर की, तब सुरती जागती हैं, तब सुरती जागती हैं। सुरती यानी वह गहरी याद, वह होश जिसमें इंसान खुद को भूलकर सिर्फ परमात्मा को याद रखता है। और जैसे ही यह अवस्था आती है, कबीर कहते हैं, पाया राम रतन, फिर वह साधारण इंसान नहीं रह जाता, उसे राम नाम रूपी वह अनमोल रत्न मिल जाता है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। दर्शन कहता है कि जब पूरा अस्तित्व एक प्रार्थना बन जाए, तभी उस रत्न की प्राप्ति होती है। अक्सर हम टुकड़ों में बटे होते हैं आंखें कुछ देख रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं और मन कहीं और हैं। कबीर कहते हैं, इन सब को एक धागे में पिरो लो, फिर देखो चमत्कार। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करें, चाहे देखें सुने या बोलें, उसमें उस मालिक की याद शामिल हो, अपनी पांचों इंद्रियों और मन को एक ही धुन में लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या आप भी उस राम रतन की एक झलक पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली ज्ञानोबा राय, कितने नाम हैं और सब नाम प्यार से लिए जाते हैं। उनको माउली भी कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है। और ऐसे योगीराज भगवान के पास कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जिसे हम पसायदान कहते हैं। और उस पसायदान के शब्दों के ऊपर हमारी चर्चा चिंतन शुरू है। क्यों करना है ये चिंतन और चर्चा? उससे रस मिलना है, फल है, बहुत सुंदर फल है, मधुर फल है। और हम सिर्फ देखते रहेंगे तो उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। फल दूर से बहुत अच्छा दिखता है, रंग अच्छा है, रूप अच्छा है, लेकिन उसका रस जब तक नहीं लेंगे तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये माउली का जो पसायदान है उसका हम रस लेने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ रस लेना नहीं है, सबको बांटना है, क्योंकि ये रस मधुर है, ये रस शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली रस जब हम लेंगे तब हमारे मन को भी शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आम का सीजन रहता है तब घर में मेहमान आते हैं, आम की खुशबू तो दूर तक चली जाती है। और जब मेहमान को हम आम काट के देते हैं तो कितनी खुशी होती है, देने वाले को भी खुशी और लेने वाले को भी खुशी। तो ये आम जैसा ही मधुर फल है पसायदान, और उसका हम आनंद ले रहे हैं, रसास्वाद ले रहे हैं। और इसमें माउली ने जो वर्णन किया है, इसके ऊपर हमारी पिछले एपिसोड में चर्चा थी। चला अंकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। कल्पतरु के ऊपर हमारा चिंतन शुरू था, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष क्या है इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की। कल्प वृक्ष जो है वो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि कल्पना में वृक्ष ऐसे नहीं है, सारे कल्प में वृक्ष है और सर्व कल्पना पूर्ण करने वाला भी वृक्ष है। क्योंकि ये वृक्ष को भी बहुत सारे नाम हैं, छोटा रहता है तब पौधा कहते हैं, रोपट, मराठी में रोपट कहते हैं पौधा, फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे झाड़ कहते हैं, और फिर झाड़ जब हो जाता है तब फल देना शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो रसदार फल आते हैं, मैच्योरिटी बोलते ना हम, मैच्योर्ड, वो है अनुभव, वो है वृक्ष। और ये वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता, छाया भी देता है और सबको प्राण वायु भी देता है। जो कोई उनके संपर्क में आता है उसे कुछ ना कुछ देता ही है। और देखिए, ये वृक्ष जो है, एक बहुत अच्छा सुना था, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, कि छोटा बच्चा रहता है और वृक्ष को पत्थर मारता है, उसके बदले में वृक्ष क्या देता है, उसको फल देता है। पत्थर मारने के बाद रिटर्न में फल देता है, हम क्या करते हैं? और इसलिए वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरी, संतों ने वृक्ष की महिमा की, पर्यावरण के लिए वृक्ष रहता है। और ये वृक्ष जो है, मानसिक पर्यावरण भी हमारा बहुत है, प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण भी बहुत है। जैसे वृक्ष प्रदूषण कम करते हैं, वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम करते हैं, वैसे हमारा मानसिक प्रदूषण भी बहुत हो गया है। नकारात्मक विचारों का प्रदूषण बहुत हो गया है, और ये विचारों का प्रदूषण अगर दूर करना है
तो क्या करना पड़ेगा? चला कल्प तरुण से आरव चेतना चिंता मणिन से गाव। ये कल्प तरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो सिर्फ अगर हम उसके तल में, उसके पास बैठेंगे तो भी बहुत प्राणवायु मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक चिंतन होगा। ये कैसे वृक्ष है ये? और सबसे अच्छा जो लगा मुझे कल्प वृक्ष का जो नाम शब्द यूज किया है, और एक कल्प वृक्ष है, और एक वृक्ष है गीता में उसका उल्लेख है, ऊर्ध्व मूलाथ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्रव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित। ये जो वृक्ष है वो उल्टा है, ऊर्ध्व मूल, उसका मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे है। ये भी वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है और उसका मूल है मूलाधार। जब तक मूल तक नहीं जाते हैं तब तक उसका आधार नहीं मिल सकता है, और अगर मूल जड़ मजबूत हो तो वृक्ष भी मजबूत हो जाता है। अगर जड़ में कुछ क्षति उत्पन्न होती है तो वृक्ष ठीक नहीं रहता। तो ऐसे हमारा वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। और ये भी कैसा है, एक अभी देखिए, अगर वृक्ष है, वृक्ष के फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल लेने पड़ेंगे। मेरे घर के आंगन में वृक्ष है और मैं कहीं बाहर गया हूं और मुझे फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे घर आना पड़ेगा, आंगन में जाके फल से, वृक्ष से फल लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां तो माउली ने कहा है ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो चलांग कल्प तरुण से आरव, चाल चलते है, मराठी में कहते चालते बोलते, चलते फिरते जो है, मीन्स खाली किताब में जो वर्णन है ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। और ये कल्प वृक्ष जो है वो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो कल्प वृक्ष आपके पास आएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन ये मनोकामना कैसी होगी उसका, फिर देखिए, हर बात का कनेक्शन, हर शब्दों का कनेक्शन एक दूसरे से है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो से जाओ कनेक्शन है, जो जेवांछील तो तेला हो, आपकी कल्पना, जैसे आप कल्प वृक्ष के संपर्क में आएंगे तो आपकी इच्छा भी पवित्र होगी, आपको अच्छा बनाने के लिए इच्छा होगी और सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा हो जाता है। और ये अच्छा अच्छा कहो कहने के लिए कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण, चलते फिरते वृक्ष जो है, कल्पनी के कल्प वृक्ष जो है, सिर्फ कल्पना के नहीं है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि चलते फिरते है, वो आएंगे। कब आएंगे? वो दो तरीके है, जब कल्प वृक्ष ऐसे, और वो भी एक नहीं है, चलांग कल्प तरुण से आरव, आरव बगीचा, और इतना बगीचा, बगीचा देखिए, बगीचे में तीन झाड़ भी हो जाते हैं और बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं। और वृंदावन गार्डन जैसे कहते हैं ना हम बेंगलोर में, जो मैसूर में वृंदावन गार्डन है, कितनी बड़ी गार्डन है, ऐसे अगर आरव बगीचा इतने वृक्ष होंगे तो एक दूसरे को देंगे। सिर्फ लेने की भाव नहीं है, देने का भी भाव है। इसलिए अगर दो कल्प वृक्ष एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? और ऐसे कल्प वृक्ष का बगीचा अगर चलते फिरते हमारे पास आएगा तो क्या होगा? निगेटिविटी रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और ये कल्प वृक्ष, चलान कल्प तरुण से आरव, ये बगीचा जो है, वो बगीचा जब होगा तब सतयुग आएगा, और सतयुग जो है, जो स्वर्ग की संकल्पना है, वहां भी हर मनुष्य जो होगा वो कल्पतरु जैसे होगा, कल्प वृक्ष जैसे होगा, और ये उनका एक नहीं,
हजारों होंगे, और इसलिए चलांग कल्पतर उनसे आरव। फिर आगे चेतना चिंतामणि से गाव, चेतन क्या है, चिंतामणि क्या है, और बोलती जे आर्णव पीयूषान से, वो पीयूष क्या है, आर्णव क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 16वें एपिसोड में। अभी ये 15वां एपिसोड पूरा हो गया है, अभी आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे 16वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नजर से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम से हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, यू नो, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट? एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: ऊपर काम करने की
1: काम नहीं किया, तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इनमें इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सी, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल, नहीं बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता ही नहीं था कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया, तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई यू नो फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा. एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है. एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी है.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे. सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी है. आई मीन इट्स अनप्रडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमिडिएटली गो अप. एंड तब हम कहें क्या करे, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं. सो व्हाट इज दैट पर्सनालिटी?
1: इट इज अ पर्सनालिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें नहीं थी?
1: उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं. बट इट इज नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है. लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है, उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट यू नो, जैसे अगर घर में सारे टेंशन में है तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को. वो फिर उनको खुद को ही पता है,
0: अंदर अंदर
1: वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है. तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते. लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं. एंड यू नो एवरीथिंग, तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर तब वो फिर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा। कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: हमसे तो हो ही नहीं पाएगा।
1: हाँ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई। तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता, तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं। जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति। कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर हैं, डोंट टेक अ डिसीशन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर, ये उनके लिए बहुत कॉमन होता। एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति, तो वो क्रिएट हो जाता। बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है। सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं, ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए।
0: दैट्स व्हाई टाइम्स वी से दैट इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं। डज इट रियली हेल्प?
1: टेम्प्ररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्ज़ाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज़्यादा तनाव है चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। इट इज़ अ टेम्प्ररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज़ करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं। अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है। तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग, हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक। आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहाँ अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट। क्योंकि अगर आप हर रोज को एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे, यही सब कितना, यू नो यू एंजॉय योर वर्क, आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप राइट थॉट से उसको कर रहे हो, यू एंजॉयिंग ईच डे, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर दैट देन एनीथिंग।
0: वेरी ट्रू, समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वहीं रहा, वो फैक्टर्स वहीं रहे।
1: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव, क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस,
0: सोसाइटी,
1: टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला, फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल,
0: यू नो कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा, यू नो, अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली एक्सेप्टेड।
1: तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है, क्यों, क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है, वो समाज, एंड समाज मींस एवरीवन अराउंड,
0: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होती, कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहां से टेंशन ना हो, सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है। इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, नो वन एंड नथिंग, नो वन, एंड जब हम कहते हैं नो वन मींस नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस, दीज आर सिचुएशंस, दीज आर पीपल जो बाहर से आते, स्ट्रेस इज माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हाँ परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ, हाँ परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है, हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माई फैमिली, अब इससे ज़्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है, उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है, ये मेरे हाथ में है, एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट, लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल।
0: अमेजिंग, यस, यू नो,
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जस्ट से ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना ये मेरे हाथ में है, वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता, स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाले थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है, और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे, वे क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन। सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है, I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है
0: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ।
1: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
0: ये क्या हो गया है,
1: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
0: गड़बड़ होगा ही होगा।
1: सो देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पॉन्स टू सब कुछ ठीक है तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद, एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम। जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते माई एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिस एम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, टोटली एनर्जी हैज फ्लोन आउट। जैसे ही आई डू दिस माई एनर्जी का सर्किट इज कम्प्लीट, इट्स हियर, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, दैट्स ऑल। वो ऐसे हैं, वो कैसे भी हैं, परिस्थिति इतनी खराब है कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना, अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी।
0: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है।
1: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट। अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे, क्या कर उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं।
0: लेकिन वो कैसे मैं,
1: व्हाट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर,
0: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल,
1: नथिंग, यू इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योरसेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ व्हाट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल। इसके ऊपर तो एक भी सेकंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर, यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स रहने देना है, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा।
0: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा।
1: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए। हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स। एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस, द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट, सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड,
0: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से कि ट्रेन लेट हो जाएगी
1: एंड हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए, and that's all,
0: and then we'll think about it, agar train late hogi tab hum uske bare mein sochenge,
1: pehle se nahi, you know, ye bhi ek, agar nahi pahunche fir kya next,
0: fir kya hoga, fir kya,
1: that is present, that is living in the present,
0: lekin fir wo planning, wo fir hum kehte hain ki hame apne aap ke aage planning to
1: karni, aapki energy itni waste ho jati hai utni der mein,
0: I suddenly realize that, you know,
1: aapki itni energy drain out ho jati hai ki us moment pe jo right decision hai aap le hi nahi pate, aap stable rahe station pahunche, fir agar train चली गई है, देन एट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ व्हाट नेक्स्ट, पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो बीइंग इन द प्रेजेंट मींस हर मोमेंट वो सोचें जो उस मोमेंट करना है, हमें लगता है पहले ही सोच के हम टाइम बचा लेंगे और उस टाइम जल्दी डिसीजन ले लेंगे, कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन.
0: दैट्स वेरी ट्रू.
1: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 minutes और 50 minutes बैक. Situation has changed, time has changed. You need to take your decision now. लेकिन हम कहते हैं हमने तो पहले ही सोच लिया था.
0: और अब वो क्योंकि वो decision लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. It's so difficult to change that decision.
1: हम सोचते नहीं. उस time हमने already decision ले लिया and we think कि हम बहुत time बचा रहे हैं. तो हम तुरंत वो जो past में decision already सोच लिया हम उसको use कर लेते हैं. Creativity means हर moment को देखते हुए. क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है. अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज एक्यूरेट
0: चेकिंग तो करनी पड़ेगी.
1: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना. ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
0: वेरी ट्रू. तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति, आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हों. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आज इतना ही, आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांकी के साथ। श्रोताओं, संगीत कुछ लोगों के लिए सिर्फ सुर और ताल का मेल होता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके लिए संगीत एक साधना, संस्कार और जीवन की यात्रा बन जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा में आगरा घराना अपनी दमदार गायकी, लयकारी, भाव और बंदिशों की समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ ऐसी ही सम्माननीय कलाकार है जिन्होंने अपनी गायकी और साधना के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, उस्ताद रजा मियां जी। सर, आपका रेडियो मन भवन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ? और रेडियो मन भवन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जहमत यहाँ आने की मुझे दावत दी और मुझसे कुछ पूछने के लिए और मुझे मेरे खानदान के बारे में कुछ बातें करने के लिए कहा।
0: शुक्रिया सर। आपकी संगीत की यात्रा से हम प्रारंभ करते हैं, ये संगीत की यात्रा का सफर जो है वह कहाँ से शुरू हुआ?
1: जी, मेरी संगीत की यात्रा 9 साल की उम्र से मैंने अपने पिताजी उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब, मरहूम उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब से तालीम हासिल की। इनिशियली वो बहुत जल्दी गुजर गए। इसके बाद मैंने अपने ताया उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब से तालीम हासिल की। और संगीत का सिलसिला ऐसा होता था कि सुबह सुबह हम लोग रियाज करते थे, चूँकि हम लोग जॉइंट फैमिली में बॉम्बे में रहते हैं तो सभी जगह से गाने, मेरे चाचा उस्ताद लताफत हुसैन खान साहब, उस्ताद अहमद हुसैन खान साहब, उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब मेरे गुरु, और सभी बहुत से और दूसरे लोग भी वहाँ रहा करते थे। सबसे पहले वहाँ विलायत हुसैन खान साहब रहा करते थे प्राणप्रिया, और यूनुस हुसैन खान साहब मेरे दूसरे गुरु भी वहाँ रहते थे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। तो तालीम ऐसी होती थी कि सुबह 6 बजे उठे हैं तो तीनों चारों कमरों में से अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, और हमारी तालीम, जब मैं खादिम हुसैन खान साहब के रूम में बैठता था तालीम करने के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने तानपुरा पकड़ा और उनके सामने गाना शुरू किया। उन्होंने थोड़ा सा बताया, उसके बाद थोड़ा बताने के बाद पहले दिन दूसरे, जैसे कोई राग शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने चलन बता दिया, दूसरे दिन थोड़ी बंदिश बता दी और उसका ठेका, ताल वगैरह बता दिया। चौथे दिन वो ये कहते थे कि अब अपने आप इसको डेवलप करो।
0: क्या बात है?
1: जब डेवलपमेंट होता था मेरी तरफ से, जो भी टूटी फूटी कोशिश होती थी मैं करता था, तो वो सुनते रहते थे, और सुनने के बाद अगर कोई गलती होती थी तो उसको फौरन टोक देते थे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। इस तरह से हमारी तालीम का सिलसिला रहा। और जब काफ़ी दिन हो जाते थे तो फिर वो दूसरा राग लेते थे। जब वो समझ जाते थे कि हाँ, अब ये एक राग इनका पक्का हो गया, बंदिशें भी आ गई इनको, ताने भी आ गई और इसका चलन और इसका सब कुछ आ गया, तो फिर वो दूसरा राग लिया करते थे। ये उनकी तालीम का, मेरे गुरुजी उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब की तालीम का ये एक खास अंदाज था।
0: क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी, आपका संबंध आगरा घराने की शास्त्रीय संगीत परंपरा से रहा
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहती हूँ कि आगरा घराने की कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपको ज्यादातर आकर्षित करती है?
1: वैसे तो बहुत सी जो सैलियंट फीचर्स हैं गाने के, सभी हैं। सुर का लगाव है और राग की सच्चाई और तमाम चीज़ें, राग की सच्चाई, सुर का लगाव, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो महत्व दिया जाता है वो लयकारी को दिया जाता है। और ये आगरा अतरौली घराना एक्चुअली है, ये इसको आगरा अतरौली घराने कहते हैं क्योंकि अतरौली के बहुत से बुजुर्ग आगरे में रहे, आगरे के बहुत से बुजुर्ग अतरौली से अतरौली के संपर्क में रहे। तो लयकारी को हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। दूसरे, बोल बनाओ, बोल किस तरह बनता है, खूबसूरत अंदाज में बोल का बनाना, बोल को बना के लयकारी, लय बोल और बोल बनाओ, बोल बांट, बोल तान, ये विशिष्ट हमारे यहाँ की खासियतें हैं जिनको हम हमारे बुजुर्गों ने हमें दी और हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हमारे जो बुजुर्गों की परंपरा है और जो उन्होंने नाम किया उन उसको हम आगे
0: बढ़ा। बहुत ही बढ़िया जी, क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी, संगीत जो है वो किताबों से तो नहीं सिखा जा सकता, लेकिन उसको सुनना, समझना और फिर उसको जानना, दोहराना, ये सब बातें जरूरी होती है, तो इन सब बातों के लिए आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, क्या होता है कि संगीत तो संगीत है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, दुनिया का कोई संगीत हो
0: जी,
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसा कोई संगीत है ही नहीं दुनिया में। ऐसा कोई संगीत नहीं है जिसके अंदर हर चीज मौजूद है, समझे? ये जो आपने सवाल किया, क्या
0: संगीत की साधना करते समय सुनना, दोहराना, रियाज करना,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: इसकी क्या महत्व है?
1: आपने सुना होगा एक कहावत है गाने बजाने के लोगों में, दिखिया सिखिया परखिया। लोग देख के सीखते हैं, देख रहे हैं, और उनको देखने का मतलब ये नहीं खाली देख रहे हैं, उनको देख, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सिखिया, सिखाने का अंदाज उनका कैसा, और परखने का अंदाज, उनको परखना। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। हमारे उस्ताद हमेशा बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देते थे कि बेटा, हमारे घराने के गायकी के अलावा तुम जितने भी दूसरे घराने हैं उनकी गायकी को खूब अच्छी तरह सुनो और मालूम करो और हासिल करो उससे कि तुम्हें क्या मिल रहा है उससे। ये नहीं कि अगर मेरा घराना है तो मैं अपने घराने तक ही सीमित रहूं,
0: जी, जी,
1: ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी घरानों में कुछ ना कुछ खुशबू, कुछ ना कुछ बात और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे घराने में नहीं है, उनके हाथ जो मेरी बातें हैं वो उनके घराने में नहीं है। तो वो तमाम ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत, खुलूस, प्यार के साथ सब लोग जितने भी घरान बुजुर्ग हैं, घराने के लोग हैं, सब मिलजुल के इसको अपने लोगों को, अपने बच्चों को तालीम दें कि दूसरों को भी सुने और दूसरों से जो अच्छी बात है उसको ले लें, हासिल करें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मेरे वालिद साहब अनवार हुसैन खान साहब की शिष्य थी गान सरस्वती किशोरी अमुनकर जी,
0: जी
1: मेरे वालिद साहब से सीखे वो, और मैं 4-5 साल तक उनके साथ में बचपन में जाता भी था। तो वो जब सिखाते थे मेरे अब्बा, तो वो कहते थे किशोरी, मैं तुझे आगरे घराने की गायकी सिखा रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि तू आगरे घराने में ढल जा, यानी तेरी गायकी में तू आगरे घराने की जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ढाल। ये मेरी, अगर मैं ये कहूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तू इतने सालों से यहाँ सीखी है तो चेंज कर, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको अपने तरीके से गाओ,
0: खुद की
1: तो
0: अलग पहचान बनाना,
1: अपनी,
0: सही बात है,
1: हाँ, मतलब अपना जो हम सिखा रहे हैं उसको अपने अंदाज में गाओ आप,
0: क्या बात है,
1: है ना। तो ये किशोरीताई जब भी मिलती थी तो वो बस आंसू जारी रहते थे, बोलते तुम्हारे वालिद साहब की ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठी है कि मैं बयान नहीं कर सकती मेरे गुरुजी की बात। तो ये बातें हैं,
0: ये बातें हैं
1: जी,
0: बहुत। उस्ताद जी, आपकी संगीत परंपरा में ठुमरी और दादरा, इन विविधाओं का भी बहुत महत्व है,
1: है। हाँ।
0: तो इन शैलियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत खूबसूरत शैलियां हैं, बड़ी खूबसूरत शैलियां हैं। आप जब तक एक कहते थे फयाज खान साहब कहते थे कि भाई अभी मुर्गी और कोरमा और सरदा तो आप बाद में खाएंगे, पहले आप छोटा सा कुछ एक चाखना वाखना
0: जैसा
1: सुनिए। तो किसी अपने शागिर्द को गवा दिया छोटी मोटी ठुमरी ये करके, तो ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। आप जो भी गाते हैं, पक्का गाना जिसको कहते हैं हम आजकल के जमाने में, लोग नहीं समझ पाते कि पक्का गाना क्या है, शास्त्रीय संगीत को पक्का गाना भी कहते हैं। जब एक गंभीर राग आपने गा लिया तो उसमें श्रोताओं में बहुत से ऐसे भी हैं जो बेचारे जिनको ज्यादा कुछ समझ नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ एक लाइट 10-15 मिनट गाना बड़ा खूबसूरत चीज मानी जाती है, और करना भी चाहिए
0: जी, जरूर जरूर,
1: हाँ, गाना चाहिए।
0: जब संगीत की थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं या परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो गायकों के गुण दोष के बारे में भी बात किया जाता है, तो आपके हिसाब से गायकों के क्या गुण होने चाहिए, क्या दोष उनमें होते हैं, उनके बारे में?
1: देखिए संगीत, अभी जो आपने कहा कि वो ये लिखित
0: लिखित स्वरूप,
1: लिखित स्वरूप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लिखित से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं
0: जी, क्या जी।
1: लेकिन जो गाना है वो तो गले से निकलेगा
0: जी, जी।
1: जब तक आप किसी के शागिर्द नहीं होंगे, जब तक आपको गाना वो नहीं आएगा। हमारे भातखंडे जी ने जो ये किया है उनका उनका नजरिया ऐसा था कि ये मैं ये करूंगा तो बहुत से लोगों के, उन्होंने आसानी पैदा करी कि लोगों के जहन में क्लासिकल म्यूजिक का पूरा एक वो आ जाए। उनका नजरिया ये भी था कि साथ में सब लोग गाएं भी उसको, लेकिन गाने पे लोगों ने ध्यान ज्यादा ना देके उस थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो उस्ताद को ये चाहिए कि थ्योरी तो सिखाए ही, बहुत ज़रूरी है वो तो सिखाना, लेकिन साथ में उनको तालीम, गाने की तालीम किस तरह होती है, जो थ्योरी में लिखा उसको गाने प्रैक्टिकल करके भी सिखाना चाहिए
0: जी। जी जी। शास्त्रीय संगीत और नई पीढ़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आजकल बहुत से उनको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, सीखते हैं यूट्यूब से, सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन क्या गुरु शिष्य परंपरा जो आज पहले से चलती आ रही है तो वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, गुरु शिष्य परंपरा। जब तक गुरु शिष्य गुरु के नीचे नहीं आएगा जब तक नहीं सीख सकता। अगर इसी तरह YouTube से सीखने के बाद या और रिकॉर्डिंग से सीखने के बाद, अब तो YouTube और सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं, पहले तो खाली रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, रेडियो के माध्यम से लोग सुनते थे, तो उस तरह से अगर सीख के जिन लोगों के जो लोग उसको क्या ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो वो जितने भी बड़े बड़े लोग जिनको शौक था वो सब गवैये बन जाते इस तरह से। जब तक अगर कोई उस्ताद उनके सामने नहीं होता तो दिख्या, वो गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत ही जरूरी है। आप जब तक गुरु के सामने नहीं गाओगी आप जब तक मुकम्मल गवैया नहीं बन सकती।
0: क्या बात है,
1: जब तक गुरु आपको कुछ नहीं बताएगा, जब तक गुरु का बहुत स्थान, बहुत महत्व स्थान है, हम और खास तौर से हमारे शास्त्रीय संगीत में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु से सीखिए आप, और ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको अच्छा गुरु मिल जाए। अच्छा गुरु का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु में गुरु में कुछ, मगर अच्छा गुरु ये कि वो तमाम चीजें आपकी आपके हिसाब से वो समझ सके। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अच्छा गुरु मिलना बहुत बहुत जरूरी है, तो अच्छा गुरु लोग ये समझते हैं कि अरे दूसरे गुरु बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा गुरु जो आपकी कैपेसिटी को, आपकी समझ को समझ सके
0: जी,
1: क्या, और वो उसी हिसाब से आपको तालीम दे। हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई कोई लड़का आया, साहब मुझे आपसे सीखना है, तो अच्छा भाई कुछ सिखाओ, कुछ मतलब कुछ गाओ, तो कहते गुरु जी मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं क्या गाऊंगा, कहते कुछ भी गाओ बेटा, खाली आवाज निकालना मुझे आवाज। तो फिल्मी गाना आता है कुछ, लोक संगीत या कुछ गांव का गाना या कुछ ऐसा कुछ आता है, आप वो सिखाइए सुनाइए, तो बड़ी मुश्किल, वो बेचारा जो भी कुछ करता था गाता था। तो मेरे गुरुजी में, मतलब मैं अपनी गुरुजी की बात कर रहा हूँ, सभी की अंदर ये होता है कि खाली आवाज के ऊपर उनको मालूम पड़ जाता था कि इसकी कैपेसिटी क्या है
0: जी, जी, सर।
1: उसको कहते हैं गुरु, फिर वो उस अंदाज से उसको सिखाते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा तो हमारी बड़ा पारंपरिक एक दौलत है हमारे पास, गुरु गुरु गुरु के पास तो सीखना ही है
0: जी, जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, जरूरी, ये बहुत जरूरी चीज है।
0: आज की जो युवा पीढ़ी है जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ना चाहती है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे?
1: मैं यही कहूंगा मैं कि भाई आजकल शास्त्रीय संगीत का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है
0: जी।
1: बिल्कुल नहीं, देखिए आप सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, उसमें क्या क्या बच्चे गा रहे हैं, क्या लाजवाब आवाजें, क्या लाजवाब गाना उनका, हालांकि वो कोई दूसरे माध्यम से म्यूजिक सुना रहे हैं, लेकिन उनका अगर उन बच्चों को तैयार किया जाए और उनको तालीम दी जाए, उनको बताया जाए कि अव्वल तो ये है कि क्लासिकल म्यूजिक को एक हवा बना दिया है, क्या कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत टाइम लगेगा, बहुत ये कुछ नहीं है, क्लासिकल म्यूजिक तो बेस है।
0: कराओके सिंगिंग का भी ट्रेंड आ चुका है अभी, ज्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं।
1: अरे वो ठीक है, वो वक्ती तौर पे है वो, लेकिन एक एक जमाने का एक एक टाइम आया, कभी कव्वाली का टाइम, कभी गजल का टाइम, कभी इसका टाइम। क्लासिकल म्यूजिक में आप मुझे बताओ, जैसा है वैसा अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपने कभी ये सुना कि अभी क्लासिकल वहां खत्म हो गया? नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। तो क्लासिकल तो बेस है। हाँ, क्लासिकल गाओगे आप तो गजल भी गा लोगे आप,

0: जहाँ तक संगीत का सवाल, मैं यही कहूँगा कि हमारे हर बच्चे को संगीत की शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है
1: जी।
0: वो सब दूसरी तमाम अपने अपने कारोबार में मुब्तला हैं, लोग अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो हमारी दौलत है और हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमें इतनी बड़ी दौलत ऊपर वाले ने दी है, तो उसको कायम रखना, उसको आगे बढ़ाना ये हमारा काम है। और ये नौजवान बच्चे या छोटे बच्चे जो इस वक्त उभर रहे हैं और जिनमें टैलेंट है, जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी है, जिनकी समझ बहुत अच्छी है, उनको मैं ये चाहूँगा कि वो लोग शास्त्रीय संगीत सीखें और इसको कायम रखें और इसको आगे ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करें।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उस्ताद जी। आज आपसे बातचीत करते हुए एक ऐसा महसूस हुआ कि संगीत केवल सुरों की यात्रा नहीं है, बल्कि साधना, संस्कार, गुरु का आशीर्वाद और अपनी पहचान तलाशने की एक यात्रा भी है।
0: बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं।
1: आपने अपनी तालीम, अपने अनुभव और अपनी विचारधारा हमसे शेयर किया, उसके लिए आपका मन भवन टीम्स की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू,
0: आपका भी शुक्रिया।

0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। जल जीवन मिशन, नल भी चले जल भी बचे।
1: जल संरक्षण, जल स्रोत की सुरक्षा और जल योजना का संचालन एवं रखरखाव।
0: हर घर जल की असली सफलता तभी है जब स्रोत सुरक्षित रहे, पानी बचे और गांव अपनी जल योजना को मिलकर संभाले। खंड एक, आज पानी है लेकिन कल। अरे अरे सुजल, जल्दी आओ, पानी आ गया।
2: आ रहा हूँ, लेकिन इतनी खुशी क्यों? अब तो हमारे गांव में नल से पानी आना कोई नई बात नहीं।
0: नई बात नहीं है, पर अच्छी बात की खुशी रोज भी मनाई जा सकती है ना।
2: अरे बाल्टी तो भर गई, नल बंद करो।
0: हाँ, अरे अरे ये नल बंद ही नहीं हो रहा। तो बहने दो ना। ये आवाज
2: और कौन? दूषिका।
3: बिल्कुल, पानी आ रहा है, बाल्टी भर गई है, थोड़ा बाहर बह गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा?
2: पहाड़ नहीं दूषिका, लेकिन अगर हर घर यही सोचे तो पानी जरूरत कम पड़ जाएगा।
3: अरे वाह, इतना पानी धरती पर है, इतनी बारिश होती है और तुम दो चार बाल्टी के लिए परेशान हो।
0: सुजल, इसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल आया, देखो ना।
2: पूछो।
0: हम हमेशा कहते हैं पानी बचाओ, लेकिन हमारे नल में पानी आखिर आता कहाँ से है?

0: बस आज की कहानी यही से शुरू होती है। घर में लगे नल से नहीं, उस जगह से जहाँ ये हमारे गांव का पानी आता है,
1: यानी हमारा जल स्रोत।
0: बिल्कुल।
2: उफ, अब ये दोनों मुझे कुएं, तालाब और बोरवेल घुमाएंगे।
0: और तुम्हें भी चलना पड़ेगा।
1: खंड दो, नल के पीछे की कहानी।

0: खंड 4 मेरे अकेले से क्या होगा। सच बताओ सुजल, ये बात हम कहीं जगह कहते हैं। एक नल टपकने से क्या होगा, एक बाल्टी बहने से क्या होगा, मेरे अकेले जल सेवा शुल्क न देने से क्या होगा, मेरे अकेले जल स्रोत की देखभाल न करने से क्या होगा।
1: और इसी क्या होगा में छोटी छोटी लापरवाहियां जुड़ती जाती है।
0: अब आई ना स्वच्छिका, अब आई ना मेरे लाइन पर। पूरी बात तो सुनो, एक आदमी की लापरवाही छोटी लग सकती है, लेकिन पूरे गांव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है।
1: एक घर पानी बचाए, दूसरा लीकेज बचाए, कोई जल स्रोत की रक्षा करे, कोई समय पर सेवा शुल्क दे, पानी समिति हिसाब रखे, पंचायत समय पर समीक्षा करे, ऑपरेटर योजना की नियमित देखभाल करे और ग्राम सभा मिलकर पूछे हमारे गांव की जल सेवा कैसी चल रही है।
0: तभी नल सिर्फ आज नहीं,
1: कल भी चलेगा,
0: गर्मी में भी
1: और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।

0: खंड 5 गांव का 5 सवालों वाला जल संकल्प। तो आज रेडियो सुन रहे हैं हर गांव से हम 5 सवाल पूछे।
1: पूछो।
0: पहला, क्या हमें पता है कि हमारे नल का पानी किस स्रोत से आता है?
1: दूसरा, क्या हमें अपने जल स्रोत को साफ, सुरक्षित और जीवित रखने के लिए कुछ कर रहे हैं?
0: तीसरा, क्या गांव में कहीं पानी बेवजह बह रहा है या लीकेज है?
1: चौथा, क्या हमारी जल

0: योजना की मोटर, टंकी, पाइपलाइन और वॉल्स की समय पर देखभाल हो रही है।
1: और पांचवा, अगर कल पानी की सप्लाई में समस्या आए तो क्या हमें पता है किसे बताना है और क्या करना है?
2: बस बस बस, ये सवाल हर गांव ने पूछ लिए तो मेरा क्या होगा?
0: वही होगा जो होना चाहिए,
1: तुम्हारी छुट्टी।
0: दोस्तों, आज कार्यक्रम सुनकर सिर्फ पानी बचाना चाहिए मत कहिए, आज ही एक काम कीजिए,
1: अपने परिवार के साथ पता कीजिए आपके घर में नल में आने वाला पानी आता कहाँ से है,
0: और अगली ग्राम सभा या पानी समिति की बैठक में एक सवाल जरूर पूछिए। हमारा जल स्रोत आने वाले 5-10 साल तक सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे गांव क्या कर रहा है?
1: और अपनी गली में एक बार देखिए, कहीं नल टपक तो नहीं रहा, कहीं पाइप से पानी बह तो नहीं रहा, कहीं टंकी से पानी बेकार तो नहीं जा रहा।
2: अरे अरे, रेडियो बंद करो, वरना लोग सच में देखने निकल पड़ेंगे।
0: यही तो चाहते हैं हम, स्रोत बचेगा
1: तो पानी रहेगा,
0: पानी बचेगा
1: तो हर घर जल चलेगा,
0: और योजना संभलेगी तो गांव का कल सुरक्षित रहेगा,
2: और मैं
1: तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।

0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के अंक तीन में हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब और सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम अब हम बता देते हैं। तो तोही तड़वी पाल तालुका रावेल जिला जलगांव से इन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। दूसरे हमारे श्रोता है भूसावल से प्राध्यापक जयेंद्र लेकुर वाले। तीसरे हमारे श्रोता है समृद्धि पाटिल भूसावल से।
1: अब इस बार का सवाल है, आपके गांव के नल में पानी किस जल स्रोत से आता है और उस स्रोत को बचाने के लिए आपके गांव में क्या किया जा रहा है?
0: हमें चिट्ठी संदेश या अपने रेडियो मनभावन कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जरूर बताएं। आपके गांव का अच्छा काम हम दूसरे गांवों तक भी पहुंचाएंगे। हमारा संपर्क क्रमांक है 9284499433। हमारा क्रमांक पुनः
1: 9284994433। इस नंबर पर हमें जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि एक गांव का अच्छा काम
0: दूसरे गांव का रास्ता बन सकता है।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि सुमिरन में मन नहीं लगता। हम मुंह से नाम तो लेते हैं पर हमारी इंद्रियां कहीं और भागती हैं। लेकिन क्या आपने कभी उस स्थिति के बारे में सोचा है जब शरीर का कण कण उस परमात्मा को पुकारने लगे? आज कबीर साहब हमें सुमिरन की उस ऊंची अवस्था के बारे में बता रहे हैं जहां पहुंचने के बाद इंसान को एक अनमोल रत्न मिल जाता है। श्रोताओं, आज का सूत्र थोड़ा गहरा है। कबीर यहां हमारे शरीर और मन की शक्तियों को एक साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं। पंच संगी प्यू प्यू करें छटा जो सुमिरे मन, पंच संगी प्यू प्यू करे छटा जो सुमिरे मन, आई सुरती कबीर की पाया राम रतन। पंच संगी प्यू प्यू करे छटा जो सुमिरे मन, पंच

श्रोताओं, कबीर साहब इस दोहे में एक अद्भुत दृश्य रच रहे हैं। वह कहते हैं, पंच संगी प्यूं प्यूं करें। ये पंच संगी हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। जब ये पांचों संसार के विषयों को छोड़कर अपनी प्यू यानी प्रियतम परमात्मा की पुकार करने लगती हैं, जब ये पांचों संसार के विषयों को छोड़कर अपने प्यू यानी प्रियतम परमात्मा की पुकार करने लगती हैं, तो एक संगीत निर्माण होता है। और इसके साथ छठा जो सुमिरे मन, जब पांचों इंद्रियां शांत होकर भीतर की ओर मुड़ती हैं, तो छठा तत्व यानी हमारा मन भी उसी सुमिरन में डूब जाता है। जब इंद्रियां और मन एक ही दिशा में लग जाते हैं, तब क्या होता है? आई सुरती कबीर की, तब सुरती जागती हैं, तब सुरती जागती हैं। सुरती यानी वह गहरी याद, वह होश जिसमें इंसान खुद को भूलकर सिर्फ परमात्मा को याद रखता है। और जैसे ही यह अवस्था आती है, कबीर कहते हैं, पाया राम रतन, फिर वह साधारण इंसान नहीं रह जाता, उसे राम नाम रूपी वह अनमोल रत्न मिल जाता है, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। दर्शन कहता है कि जब पूरा अस्तित्व एक प्रार्थना बन जाए, तभी उस रत्न की प्राप्ति होती है। अक्सर हम टुकड़ों में बटे होते हैं आंखें कुछ देख रही हैं, कान कुछ सुन रहे हैं और मन कहीं और है। कबीर कहते हैं, इन सब को एक धागे में पिरो लो, फिर देखो चमत्कार। दोस्तों, कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करें, चाहे देखें सुने या बोलें, उसमें उस मालिक की याद शामिल हो, अपनी पांचों इंद्रियों और मन को एक ही धुन में लगाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या आप भी उस राम रतन की एक झलक पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

नमस्कार, ओम शांति। संत श्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज माउली ज्ञानोबा राय, कितने नाम हैं और सब नाम प्यार से लिए जाते हैं। उनको माउली भी कहा जाता है, योगीराज कहा जाता है। और ऐसे योगीराज भगवान के पास कुछ प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं, जिसे हम पसायदान कहते हैं। और उस पसायदान के शब्दों के ऊपर हमारी चर्चा चिंतन शुरू है। क्यों करना है ये चिंतन और चर्चा? उससे रस मिलना है, फल है, बहुत सुंदर फल है, मधुर फल है। और हम सिर्फ देखते रहेंगे तो उसका आनंद नहीं ले सकेंगे। फल दूर से बहुत अच्छा दिखता है, रंग अच्छा है, रूप अच्छा है, लेकिन उसका रस जब तक नहीं लेंगे तब तक उसका आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे ही ये माउली का जो पसायदान है उसका हम रस लेने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ रस लेना नहीं है, सबको बांटना है, क्योंकि ये रस मधुर है, ये रस शक्तिशाली है। और ये शक्तिशाली रस जब हम लेंगे तब हमारे मन को भी शक्ति मिलेगी, आनंद मिलेगा। आम का सीजन रहता है तब घर में मेहमान आते हैं, आम की खुशबू तो दूर तक चली जाती है। और जब मेहमान को हम आम काट के देते हैं तो कितनी खुशी होती है, देने वाले को भी खुशी और लेने वाले को भी खुशी। तो ये आम जैसा ही मधुर फल है पसायदान, और उसका हम आनंद ले रहे हैं, रसास्वाद ले रहे हैं। और इसमें माउली ने जो वर्णन किया है, इसके ऊपर हमारी पिछले एपिसोड में चर्चा थी। चला अंकल्प तरुण से आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोलती जे आर्णव पीयूषान से। कल्पतरु के ऊपर हमारा चिंतन शुरू था, पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि ये कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। और कल्प वृक्ष क्या है इसके ऊपर हमने कुछ चर्चा की। कल्प वृक्ष जो है वो पिछले एपिसोड में हमने कहा था कि कल्पना में वृक्ष ऐसे नहीं है, सारे कल्प में वृक्ष है और सर्व कल्पना पूर्ण करने वाला भी वृक्ष है। क्योंकि ये वृक्ष को भी बहुत सारे नाम हैं। छोटा रहता है तब पौधा कहते हैं, रोप्ट, मराठी में रोप्ट कहते हैं पौधा। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है तब उसे झाड़ कहते हैं। और फिर झाड़ जब हो जाता है तब फल देना शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो रसदार फल आते हैं, मैच्योरिटी बोलते ना हम, मैच्योर्ड, वो है अनुभव, वो है वृक्ष। और ये वृक्ष सिर्फ फल नहीं देता, छाया भी देता है और सबको प्राण वायु भी देता है। जो कोई उनके संपर्क में आता है उसे कुछ ना कुछ देता ही है। और देखिए, ये वृक्ष जो है, एक बहुत अच्छा सुना था, आपने भी देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि छोटा बच्चा रहता है और वृक्ष को पत्थर मारता है, उसके बदले में वृक्ष क्या देता है, उसको फल देता है। पत्थर मारने के बाद रिटर्न में फल देता है, हम क्या करते हैं? और इसलिए वृक्षवल्ली अम्हा सोयरे वनचरी, संतों ने वृक्ष की महिमा की, पर्यावरण के लिए वृक्ष रहता है। और ये वृक्ष जो है, मानसिक पर्यावरण भी हमारा बहुत है, प्रदूषण, मानसिक प्रदूषण भी बहुत है। जैसे वृक्ष प्रदूषण कम करते हैं, वातावरण में जो प्रदूषण है वो कम करते हैं, वैसे हमारा मानसिक प्रदूषण भी बहुत हो गया है। नकारात्मक विचारों का प्रदूषण बहुत हो गया है। और ये विचारों का प्रदूषण अगर दूर करना है
तो क्या करना पड़ेगा? चला अंकल्प तरुण से आरव चेतना चिंता मणिन से गाव। ये कल्प तरु जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो सिर्फ अगर हम उसके तल में उसके पास बैठेंगे तो भी बहुत प्राणवायु मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी, सकारात्मक चिंतन होगा। ये कैसे वृक्ष है ये? और सबसे अच्छा जो लगा मुझे कल्प वृक्ष का जो नाम शब्द यूज किया है, और एक कल्प वृक्ष है, और एक वृक्ष है गीता में उसका उल्लेख है, ऊर्ध्व मूलाथ शाखम अश्वत्थम प्राहुर्रव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेदवित। ये जो वृक्ष है वो उल्टा है, ऊर्ध्व मूल उसका मूल जो है वो ऊपर है और शाखाएं जो है वो नीचे है। ये भी वृक्ष है, और ये वृक्ष जो है और उसका मूल है मूलाधार। जब तक मूल तक नहीं जाते हैं तब तक उसका आधार नहीं मिल सकता है, और अगर मूल जड़ मजबूत हो तो वृक्ष भी मजबूत हो जाता है। अगर जड़ में कुछ क्षति उत्पन्न होती है तो वृक्ष ठीक नहीं रहता। तो ऐसे हमारा वृक्ष जो है कल्प वृक्ष, ये कल्प वृक्ष है। और ये भी कैसा है, एक अभी देखिए, अगर वृक्ष है, वृक्ष के फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे? वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल लेने पड़ेंगे। मेरे घर के आंगन में वृक्ष है और मैं कहीं बाहर गया हूं और मुझे फल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे घर आना पड़ेगा, आंगन में जाके फल से, वृक्ष से फल लेने पड़ेंगे। लेकिन यहां तो माउली ने कहा है ये वृक्ष जो है, कल्प वृक्ष जो है, वो चलांग कल्प तरुण से आरव, चाल चलते है, मराठी में कहते चालते बोलते, चलते फिरते जो है, मीन्स खाली किताब में जो वर्णन है ये नहीं है, वो प्रत्यक्ष है। और ये कल्प वृक्ष जो है वो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो कल्प वृक्ष आपके पास आएगा और आपकी मनोकामना पूर्ण करेगा। लेकिन ये मनोकामना कैसी होगी उसका फिर देखिए, हर बात का कनेक्शन, हर शब्दों का कनेक्शन एक दूसरे से है। विश्व स्वधर्मे सूर्य पाहो से जाओ कनेक्शन है, जो जेवांचील तो तेला हो, आपकी कल्पना, जैसे आप कल्प वृक्ष के संपर्क में आएंगे तो आपकी इच्छा भी पवित्र होगी, आपको अच्छा बनाने के लिए इच्छा होगी और सब कुछ अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा कहो तो अच्छा हो जाता है। और ये अच्छा अच्छा कहो कहने के लिए कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण, चलते फिरते वृक्ष जो है, कल्पनी के कल्प वृक्ष जो है, सिर्फ कल्पना के नहीं है, प्रत्यक्ष है, क्योंकि चलते फिरते है, वो आएंगे। कब आएंगे? वो दो तरीके हैं, जब कल्प वृक्ष ऐसे, और वो भी एक नहीं है। चलांग कल्प तरुण से आरव, आरव बगीचा, और इतना बगीचा, बगीचा देखिए, बगीचे में तीन झाड़ भी हो जाते हैं और बहुत सारे पेड़ हो जाते हैं, बहुत सारे वृक्ष हो जाते हैं। और वृंदावन गार्डन जैसे कहते हैं ना हम बेंगलोर में, जो मैसूर में वृंदावन गार्डन है, कितनी बड़ी गार्डन है। ऐसे अगर आरव बगीचा इतने वृक्ष होंगे तो एक दूसरे को देंगे, सिर्फ लेने की भाव नहीं है, देने का भी भाव है। इसलिए अगर दो कल्प वृक्ष एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या होगा? और ऐसे कल्प वृक्ष का बगीचा अगर चलते फिरते हमारे पास आएगा तो क्या होगा? निगेटिविटी रहेगी? बिल्कुल ही नहीं रहेगी। और ये कल्प वृक्ष, चलांग कल्प तरुण से आरव, ये बगीचा जो है, वो बगीचा जब होगा तब सतयुग आएगा। और सतयुग जो है, जो स्वर्ग की संकल्पना है, वहां भी हर मनुष्य जो होगा वो कल्पतरु जैसे होगा, कल्प वृक्ष जैसे होगा, और ये उनका एक नहीं
हजारों होंगे और इसलिए चलांग कल्पतर उनसे आरव। फिर आगे चेतना चिंतामणि से गाव, चेतन क्या है, चिंतामणि क्या है, और बोलती जे आर्णव पीयूषान से, वो पीयूष क्या है, आर्णव क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे 16वें एपिसोड में। अभी ये 15वां एपिसोड पूरा हो गया है, अभी आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे 16वें एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नज़र से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम से हमारे ऐसे स्ट्रॉन्ग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत ज़रूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई हैं कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था। और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट? एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: ऊपर काम करने की
1: काम नहीं किया, तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम? आई नीड टू एक्सपेरिमेंट कि टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इनमें इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते ही वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सी, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया एज नेचुरल, नहीं बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता ही नहीं था कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया, तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई यू नो फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी, क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है, तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा. एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है. एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी है.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे. सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की, हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है, तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी हिट. आई मीन इट्स अनप्रडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमिडिएटली गो अप. एंड तब हम कहें क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा, एक और बात बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं. सो व्हाट इज दैट पर्सनालिटी?
1: इट इज अ पर्सनालिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें नहीं,
1: उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है. लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है, उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट यू नो, जैसे अगर घर में सारे टेंशन में है तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को. वो फिर उनको खुद को ही पता है,
0: अंदर अंदर
1: वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते. लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं. एंड यू नो एवरीथिंग, तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर
0: तब वो फिर
1: ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम जिस लेवल की बात कर रहे हैं कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना है, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा। कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: हमसे तो हो ही नहीं पाएगा।
1: क्या सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता सो वी गो एंड चेक आर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई। तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना ज़रूरी है, अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं। जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कंसंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति। कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर हैं डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर, ये उनके लिए बहुत कॉमन होता। एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति तो वो क्रिएट हो जाता। बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है। सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना चाहिए।
0: दैट्स व्हाई टाइम्स वी से दैट इफ यू आर अंडर स्ट्रेस टेक अ ब्रेक, यू नो इट विल एक्चुअली टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं। डज इट रियली हेल्प?
1: टेम्प्ररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो आप बहुत ज़्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे तो आपको लगता है एग्जाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज़्यादा तनाव है चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। इट इज़ अ टेम्प्ररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं। अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है। तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग, हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहां अभी आई एम नॉट यू नो हैप्पी, आई नीड टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस, आई डोंट नो व्हेन इट हैपेंड लास्ट। क्योंकि अगर आप हर रोज को एंजॉय कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो ब्रेक लेकर क्या करेंगे, यही सब कितना, यू नो यू एंजॉय योर वर्क, आप जो कर रहे हो उसी के अंदर अगर आप राइट थॉट से उसको कर रहे हो, यू एंजॉयिंग ईच डे, यू डोंट नीड टू टेक अ ब्रेक फॉर दैट देन एनीथिंग।
0: वेरी ट्रू, समवेयर वही स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमने सोचा कि हॉलीडे या ब्रेक लेते हैं, लेकिन वो ब्रेक से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वही रहा, वो फैक्टर्स वही रहे।
1: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव, क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस,
0: सोसाइटी,
1: टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते, तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला, फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल,
0: यू नो कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा, यू नो, अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली
1: तब हमने कहा कि तब, इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है, क्यों, क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है, वो समाज, एंड समाज मींस एवरीवन अराउंड,
0: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होती, कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहां से टेंशन ना हो, सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है। इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन, नो वन एंड नथिंग, नो वन, एंड जब हम कहते हैं नो वन मींस नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ माई स्ट्रेस, दीज आर सिचुएशंस, दीज आर पीपल जो बाहर से आते, स्ट्रेस इज माई रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन। हाँ परिस्थिति चैलेंजिंग है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ, हाँ परिस्थिति बहुत चैलेंजिंग है, हमने कुछ दिन पहले ही देखा डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन माई फैमिली, अब इससे ज़्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है, उस परिस्थिति के रिस्पॉन्स में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है, ये मेरे हाथ में है, एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट, लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल।
0: अमेजिंग, यस, यू नो,
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जस्ट से ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना ये मेरे हाथ में है, वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता, स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है, और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा। मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे करते जाएंगे, वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन। सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है, I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है
0: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ।
1: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
0: ये क्या हो गया है,
1: सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
0: गड़बड़ होगा ही होगा।
1: सो देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पांस टू सब कुछ ठीक है तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद, एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम। जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते माई एनर्जी फ्लोज आउट, आई डिस एम्पावर माई सेल्फ, समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, टोटली एनर्जी हैज फ्लोन आउट। जैसे ही आई डू दिस माई एनर्जी का सर्किट इज कम्प्लीट, इट्स हियर, आई हैव द पावर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, दैट्स ऑल। वो ऐसे हैं, वो कैसे भी हैं, परिस्थिति इतनी खराब है कैसी भी है, फिर भी थॉट कौन सी क्रिएट करना, अब मुझे सिर्फ ये सीखना है कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी,
0: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है।
1: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट, अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे, क्या कर, उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं,
0: लेकिन वो कैसे मैं,
1: what can you do? You only have to sit there.
0: Can't do anything, but then it's so natural.
1: Nothing. You even then you will only have to tell yourself, hope I reach there on time. If not, then I will have to see now what next. And keep silent. That's all. इसके ऊपर तो एक भी second thought चलाने का question ही नहीं है, क्योंकि जितने thoughts आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर, यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स रहने देना है, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा।
0: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा।
1: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए। हैव यू एवर ट्राइड दैट? आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स। एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस, द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट, सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस्ड,
0: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से कि ट्रेन लेट हो जाएगी
1: एंड हो या नहीं हो, यहाँ नहीं कुछ भी होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल,
0: एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट, अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे,
1: पहले से नहीं, यू नो ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट,
0: फिर क्या होगा,
1: That is present. That is living in the present.
0: लेकिन फिर वो planning, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे planning तो करनी
1: है। आपकी energy इतनी waste हो जाती है उतनी देर में।
0: I suddenly realize that, you know.
1: आपकी इतनी energy drain out हो जाती है कि उस moment पे जो right decision है आप ले ही नहीं पाते। आप stable रहे, station पहुंचे, फिर अगर train चली गई है, then at the present moment, now what next?
0: The doubt creating
1: पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो being in the present means हर moment वो सोचें जो उस moment करना है, हमें लगता है पहले ही सोच के हम time बचा लेंगे और उस time जल्दी decision ले लेंगे, कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन.
0: दैट्स वेरी ट्रू.
1: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 minutes और 50 minutes बैक. Situation has changed, time has changed. You need to take your decision now. लेकिन हम कहते हमने तो पहले ही सोच लिया था.
0: और अब वो क्योंकि वो decision लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. It's so difficult to change that decision.
1: हम सोचते नहीं. उस time हमने already decision ले लिया and we think कि हम बहुत time बचा रहे हैं. तो हम तुरंत वो जो past में decision already सोच लिया हम उसको use कर लेते हैं. Creativity means हर moment को देखते हुए. क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूँ कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है. अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज एक्यूरेट
0: चेकिंग तो करनी पड़ेगी.
1: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना. ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट जाए ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
0: वेरी ट्रू. तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया है कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly.
1: Absolutely.
0: कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति. आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हों. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहाँ आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. आज इतना ही. आगे भी बातचीत होती रहेगी, मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांकी के साथ। श्रोताओं, संगीत कुछ लोगों के लिए सिर्फ सुर और ताल का मेल होता है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनके लिए संगीत एक साधना, संस्कार और जीवन की यात्रा बन जाता है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की समृद्ध परंपरा में आगरा घराना अपनी दमदार गायकी, लयकारी, भाव और बंदिशों की समृद्ध परंपरा के लिए जाना जाता है। आज हमारे साथ ऐसी ही सम्माननीय कलाकार है जिन्होंने अपनी गायकी और साधना के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, उस्ताद रजा मियां जी। सर, आपका रेडियो मन भवन के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ? और रेडियो मन भवन का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जहमत यहाँ आने की मुझे दावत दी और मुझसे कुछ पूछने के लिए और मुझे मेरे खानदान के बारे में कुछ बातें करने के लिए कहा।
0: शुक्रिया सर। आपकी संगीत की यात्रा से हम प्रारंभ करते हैं, ये संगीत की यात्रा का सफर जो है वह कहाँ से शुरू हो?
1: जी, मेरी संगीत की यात्रा 9 साल की उम्र से मैंने अपने पिताजी उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब, मरहूम उस्ताद अनवार हुसैन खान साहब से तालीम हासिल की। इनिशियली वो बहुत जल्दी गुजर गए। इसके बाद मैंने अपने ताया उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब से तालीम हासिल की। और संगीत का सिलसिला ऐसा होता था कि सुबह सुबह हम लोग रियाज करते थे। चूँकि हम लोग जॉइंट फैमिली में बॉम्बे में रहते हैं, तो सभी जगह से गाने, मेरे चाचा उस्ताद लताफत हुसैन खान साहब, उस्ताद अहमद हुसैन खान साहब, उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब मेरे गुरु, और सभी बहुत से और दूसरे लोग भी वहाँ रहा करते थे। सबसे पहले वहाँ विलायत हुसैन खान साहब रहा करते थे प्राणपिया, और यूनुस हुसैन खान साहब मेरे दूसरे गुरु भी वहाँ रहते थे। इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। तो तालीम ऐसी होती थी कि सुबह 6 बजे उठे हैं तो तीनों चारों कमरों में से अलग अलग आवाज़ें आ रही हैं, और हमारी तालीम, जब मैं खादिम हुसैन खान साहब के रूम में बैठता था तालीम करने के लिए, तो वो अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैंने तानपुरा पकड़ा और उनके सामने गाना शुरू किया। उन्होंने थोड़ा सा बताया, उसके बाद थोड़ा बताने के बाद पहले दिन दूसरे, जैसे कोई राग शुरू किया तो पहले दिन उन्होंने चलन बता दिया, दूसरे दिन थोड़ी बंदिश बता दी और उसका ठेका, ताल वगैरह बता दिया। चौथे दिन वो ये कहते थे कि अब अपने आप इसको डेवलप करो।
0: क्या बात है?
1: जब डेवलपमेंट होता था, मेरी तरफ से जो भी टूटी फूटी कोशिश होती थी मैं करता था, तो वो सुनते रहते थे, और सुनने के बाद अगर कोई गलती होती थी तो उसको फौरन टोक देते थे कि भाई नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करिए। इस तरह से हमारी तालीम का सिलसिला रहा। और जब काफ़ी दिन हो जाते थे तो फिर वो दूसरा राग लेते थे। जब वो समझ जाते थे कि हाँ, अब ये एक राग इनका पक्का हो गया, बंदिशें भी आ गई इनको, ताने भी आ गई, और इसका चलन और इसका सब कुछ आ गया, तो फिर वो दूसरा लिया करते थे। ये उनकी उनकी तालीम का, मेरे गुरुजी उस्ताद खादिम हुसैन खान साहब की तालीम का ये एक खास अंदाज था।
0: क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी, आपका संबंध आगरा घराने की शास्त्रीय संगीत परंपरा से रहा
1: जी,
0: तो मैं जानना चाहती हूँ कि आगरा घराने की कौन सी ऐसी विशेषता है जो आपको ज्यादातर आकर्षित करती है?
1: वैसे तो बहुत सी जो सैलियंट फीचर्स हैं गाने के, सभी हैं। सुर का लगाव है और राग की सच्चाई और तमाम चीज़ें, राग की सच्चाई, सुर का लगाव, और ख़ास तौर से हमारे यहाँ जो महत्व दिया जाता है वो लयकारी को दिया जाता है। और ये आगरा अतरौली घराना एक्चुअली है, ये इसको आगरा अतरौली घराने कहते हैं क्योंकि अतरौली के बहुत से बुजुर्ग आगरे में रहे, आगरे के बहुत से बुजुर्ग अतरौली से अतरौली के संपर्क में रहे। तो लयकारी को हमारे यहाँ बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। दूसरे, बोल बनाओ, बोल किस तरह बनता है, खूबसूरत अंदाज में बोल का बनाना, बोल को बना के लयकारी, लय बोल और बोल बनाओ, बोल बांट, बोल तान, ये विशिष्ट हमारे यहाँ की खासियतें हैं जिनको हम हमारे बुजुर्गों ने हमें दी और हम इसके ऊपर मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको हमारे जो बुजुर्गों की परंपरा है और जो उन्होंने नाम किया उन उसको हम आगे
0: बढ़ा। बहुत ही बढ़िया जी, क्या बात है, क्या बात है। उस्ताद जी, संगीत जो है वो किताबों से तो नहीं सिखा जा सकता, लेकिन उसको सुनना, समझना और फिर उसको जानना, दोहराना, ये सब बातें जरूरी होती है, तो इन सब बातों के लिए आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, क्या होता है कि संगीत तो संगीत है, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक हो, दुनिया का कोई संगीत हो
0: जी,
1: भारतीय शास्त्रीय संगीत जैसा कोई संगीत है ही नहीं दुनिया में। ऐसा कोई संगीत नहीं है जिसके अंदर हर चीज मौजूद है, समझे? ये जो आपने सवाल किया, क्या
0: संगीत की साधना करते समय सुनना, दोहराना, रियाज करना,
1: बिल्कुल,
0: इसकी क्या महत्व है?
1: आपने सुना होगा एक कहावत है गाने बजाने के लोगों में, दिखिया सिखिया परखिया। लोग देख के सीखते हैं, देख रहे हैं, और उनको देखने का मतलब ये नहीं खाली देख रहे हैं, उनको देख, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सिखिया, सिखाने का अंदाज उनका कैसा, और परखने का अंदाज, उनको परखना। तो ये तमाम चीजें बहुत जरूरी है। हमारे उस्ताद हमेशा बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देते थे कि बेटा, हमारे घराने के गायकी के अलावा तुम जितने भी दूसरे घराने हैं उनकी गायकी को खूब अच्छी तरह सुनो और मालूम करो और हासिल करो उससे कि तुम्हें क्या मिल रहा है उससे। ये नहीं कि अगर मेरा घराना है तो मैं अपने घराने तक ही सीमित रहूं,
0: जी, जी,
1: ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी घरानों में कुछ ना कुछ खुशबू, कुछ ना कुछ बात और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो मेरे घराने में नहीं है, उनके हाथ जो मेरी बातें हैं वो उनके घराने में नहीं है। तो वो तमाम ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और मोहब्बत, खुलूस, प्यार के साथ सब लोग जितने भी घरान बुजुर्ग हैं, घराने के लोग हैं, सब मिलजुल के इसको अपने लोगों को, अपने बच्चों को तालीम दें कि दूसरों को भी सुने और दूसरों से जो अच्छी बात है उसको ले लें, हासिल करें। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे मेरे वालिद साहब अनवार हुसैन खान साहब की शिष्य थी गान सरस्वती किशोरी अमुनकर जी,
0: जी
1: मेरे वालिद साहब से सीखे वो, और मैं 4-5 साल तक उनके साथ में बचपन में जाता भी था। तो वो जब सिखाते थे मेरे अब्बा, तो वो कहते थे किशोरी, मैं तुझे आगरे घराने की गायकी सिखा रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि तू आगरे घराने में ढल जा, यानी तेरी गायकी में तू आगरे घराने की जो मैं सिखा रहा हूँ उसको ढाल। ये मेरी, अगर मैं ये कहूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि तू इतने सालों से यहाँ सीखी है तो चेंज कर, मैं जो सिखा रहा हूँ उसको अपने तरीके से गाओ,
0: खुद की
1: तो
0: अलग पहचान बनाना
1: अपनी,
0: सही बात है,
1: हाँ, मतलब अपना जो हम सिखा रहे हैं उसको अपने अंदाज में गाओ आप,
0: क्या बात है,
1: है ना। तो ये किशोरीताई जब भी मिलती थी तो वो बस आंसू जारी रहते थे, बोलते तुम्हारे वालिद साहब की ये बात मेरे दिल में ऐसी बैठी है कि मैं बयान नहीं कर सकती मेरे गुरुजी की बात। तो ये बातें हैं,
0: ये बातें हैं
1: जी,
0: बहुत। उस्ताद जी, आपकी संगीत परंपरा में ठुमरी और दादरा, इन विविधाओं का भी बहुत महत्व है,
1: है। हाँ।
0: तो इन शैलियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत खूबसूरत शैलियां हैं, बड़ी खूबसूरत शैलियां हैं। आप जब तक एक कहते थे फयाज खान साहब कहते थे कि भाई अभी मुर्गी और कोरमा और सरदा तो आप बाद में खाएंगे, पहले आप छोटा सा कुछ एक चाखना वाखना
0: जैसा
1: सुनिए। तो किसी अपने शागिर्द को गवा दिया छोटी मोटी ठुमरी ये करके, तो ये बड़ी खूबसूरत चीजें हैं। आप जो भी गाते हैं, पक्का गाना जिसको कहते हैं हम आजकल के जमाने में, लोग नहीं समझ पाते कि पक्का गाना क्या है। शास्त्रीय संगीत को पक्का गाना भी कहते हैं। जब एक गंभीर राग आपने गा लिया तो उसमें श्रोताओं में बहुत से ऐसे भी हैं जो बेचारे, जिनको ज्यादा कुछ समझ नहीं है, तो उनके लिए थोड़ा सा कुछ एक लाइट 10-15 मिनट गाना बड़ा खूबसूरत चीज मानी जाती है, और करना भी चाहिए
0: जी, जरूर जरूर,
1: हाँ, गाना चाहिए।
0: जब संगीत की थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं या परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो गायकों के गुण दोष के बारे में भी बात किया जाता है, तो आपके हिसाब से गायकों के क्या गुण होने चाहिए, क्या दोष उनमें होते हैं, उनके बारे में?
1: देखिए संगीत, अभी जो आपने कहा कि वो ये लिखित
0: लिखित स्वरूप,
1: लिखित स्वरूप जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा कि लिखित से आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं
0: जी, क्या जी।
1: लेकिन जो गाना है वो तो गले से निकलेगा
0: जी, जी।
1: जब तक आप किसी के शागिर्द नहीं होंगे, जब तक आपको गाना वो नहीं आएगा। हमारे भातखंडे जी ने जो ये किया है उनका उनका नजरिया ऐसा था कि ये मैं ये करूंगा तो बहुत से लोगों के, उन्होंने आसानी पैदा करी कि लोगों के जहन में क्लासिकल म्यूजिक का पूरा एक वो आ जाए। उनका नजरिया ये भी था कि साथ में सब लोग गाएं भी उसको, लेकिन गाने पे लोगों ने ध्यान ज्यादा ना देके उस थ्योरी पे ज्यादा ध्यान दिया। तो उस्ताद को ये चाहिए कि थ्योरी तो सिखाए ही, बहुत जरूरी है वो तो सिखाना, लेकिन साथ में उनको तालीम, गाने की तालीम किस तरह होती है, जो थ्योरी में लिखा उसको गाने प्रैक्टिकल करके भी सिखाना चाहिए
0: जी। जी जी। शास्त्रीय संगीत और नई पीढ़ी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आजकल बहुत से उनको सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, सीखते हैं यूट्यूब से, सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन क्या गुरु शिष्य परंपरा जो आज पहले से चलती आ रही है तो वो, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, गुरु शिष्य परंपरा। जब तक गुरु शिष्य गुरु के नीचे नहीं आएगा जब तक नहीं सीख सकता। अगर इसी तरह YouTube से सीखने के बाद या और रिकॉर्डिंग से सीखने के बाद, अब तो YouTube और सोशल मीडिया पे बहुत सी चीजें ऐसी आ गई हैं, पहले तो खाली रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, रेडियो के माध्यम से लोग सुनते थे, तो उस तरह से अगर सीख के जिन लोगों के जो लोग उसको क्या ये तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल थी, तो वो जितने भी बड़े बड़े लोग जिनको शौक था वो सब गवैये बन जाते इस तरह से। जब तक अगर कोई उस्ताद उनके सामने नहीं होता तो दिख्या, वो गुरु शिष्य परंपरा तो बहुत ही जरूरी है। आप जब तक गुरु के सामने नहीं गाओगी, आप जब तक मुकम्मल गवैया नहीं बन सकते।
0: क्या बात है,
1: जब तक गुरु आपको कुछ नहीं बताएगा, जब तक गुरु का बहुत स्थान, बहुत महत्व स्थान है, हम और खास तौर से हमारे शास्त्रीय संगीत में गुरु का बहुत महत्व है। गुरु से सीखिए आप, और ये आपकी खुशनसीबी है कि आपको अच्छा गुरु मिल जाए। अच्छा गुरु का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु में कुछ, मगर अच्छा गुरु ये कि वो तमाम चीजें आपकी, आपके हिसाब से वो समझ सके। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई अच्छा गुरु मिलना बहुत बहुत जरूरी है, तो अच्छा गुरु लोग ये समझते हैं कि अरे दूसरे गुरु बुरे होते हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा गुरु जो आपकी कैपेसिटी को, आपकी समझ को समझ सके
0: जी,
1: क्या, और वो उसी हिसाब से आपको तालीम दे। हमारे गुरुजी कहते थे कि भाई कोई लड़का आया, साहब मुझे आपसे सीखना है, तो अच्छा भाई कुछ सिखाओ, कुछ मतलब कुछ गाओ। तो कहते गुरु जी मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं क्या गाऊंगा। कहते कुछ भी गाओ बेटा, खाली आवाज निकालना मुझे आवाज। तो फिल्मी गाना आता है कुछ, लोक संगीत या कुछ गांव का गाना या कुछ ऐसा कुछ आता है, आप वो सिखाइए सुनाइए। तो बड़े मुश्किल, वो बेचारा जो भी कुछ करता था गाता था। तो मेरे गुरुजी में, मतलब मैं अपनी गुरुजी की बात कर रहा हूँ, सभी की अंदर ये होता है कि खाली आवाज के ऊपर उनको मालूम पड़ जाता था कि इसकी कैपेसिटी क्या है
0: जी, जी, सर।
1: उसको कहते हैं गुरु, फिर वो उस अंदाज से उसको सिखाते थे। तो गुरु शिष्य परंपरा तो हमारी बड़ा पारंपरिक एक दौलत है हमारे पास। गुरु गुरु गुरु के पास तो सीखना ही है
0: जी, जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, जरूरी, ये बहुत जरूरी चीज है।
0: आज की जो युवा पीढ़ी है जो शास्त्रीय संगीत से जुड़ना चाहती है, उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, उनको क्या मार्गदर्शन करेंगे?
1: मैं यही कहूंगा मैं कि भाई आजकल शास्त्रीय संगीत का जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है
0: जी।
1: बिल्कुल ये देखिए, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रोग्राम होते हैं अलग अलग, उसमें क्या क्या बच्चे गा रहे हैं, क्या लाजवाब आवाजें, क्या लाजवाब गाना उनका। हालांकि वो कोई दूसरे माध्यम से म्यूजिक सुना रहे हैं, लेकिन उनका अगर उन बच्चों को तैयार किया जाए और उनको तालीम दी जाए, उनको बताया जाए कि अव्वल तो ये है कि क्लासिकल म्यूजिक को एक हवा बना दिया है। क्या कि क्लासिकल म्यूजिक बहुत टाइम लगेगा, बहुत ये कुछ नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक तो बेस है।
0: कराओके सिंगिंग का भी ट्रेंड आ चुका है अभी, ज्यादातर लोग उसे पसंद करते हैं।
1: अरे वो ठीक है, वो वक्ती तौर पे है वो, लेकिन एक एक जमाने का एक एक टाइम आया, कभी कव्वाली का टाइम, कभी गजल का टाइम, कभी इसका टाइम। क्लासिकल म्यूजिक में आप मुझे बताओ, जैसा है वैसा अभी तक चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आपने कभी ये सुना कि अभी क्लासिकल वहां खत्म हो गया? नहीं, कभी नहीं खत्म होगा। तो क्लासिकल तो बेस है। हाँ, क्लासिकल गाओगे आप तो गजल भी गा लोगे, आप कव्वाली भी गा लोगे, लोक संगीत भी गा लोगे, हैं, और शास्त्रीय संगीत तो है ही। तो ये बच्चों को इस बात की तालीम देना चाहिए। अच्छे टैलेंटेड उभरते हुए बच्चे हैं, उनको ऐसी तालीम हमें जरूर देनी चाहिए और उनको आगे लाने के लिए हमें पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए।
0: जी जी जी,
1: बहुत जरूरी है।
0: जाते जाते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जहाँ तक संगीत का सवाल, मैं यही कहूँगा कि हमारे हर बच्चे को संगीत की शिक्षा लेना बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: वो सब दूसरी तमाम अपने अपने कारोबार में मुब्तला हैं, लोग अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत जो हमारी दौलत है, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि हमें इतनी बड़ी दौलत ऊपर वाले ने दी है, तो उसको कायम रखना, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा काम है। और ये नौजवान बच्चे या छोटे बच्चे जो इस वक्त उभर रहे हैं और जिनमें टैलेंट है, जिनकी आवाज़ें बहुत अच्छी है, जिनकी समझ बहुत अच्छी है, उनको मैं ये चाहूँगा कि वो लोग शास्त्रीय संगीत सीखें और इसको कायम रखें और इसको आगे ले जाने की पूरी पूरी कोशिश करें।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उस्ताद जी। आज आपसे बातचीत करते हुए एक ऐसा महसूस हुआ कि संगीत केवल सुरों की यात्रा नहीं है, बल्कि साधना, संस्कार, गुरु का आशीर्वाद और अपनी पहचान तलाशने की एक यात्रा भी है।
1: बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं।
0: आपने अपनी तालीम, अपने अनुभव और अपनी विचारधारा हमसे शेयर किया, उसके लिए आपका मन भवन टीम्स की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच।
1: आपका भी शुक्रिया बहुत।

0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। जल जीवन मिशन, नल भी चले जल भी बचे।
1: जल संरक्षण, जल स्रोत की सुरक्षा और जल योजना का संचालन एवं रखरखाव।
0: हर घर जल की असली सफलता तभी है जब स्रोत सुरक्षित रहे, पानी बचे और गांव अपनी जल योजना को मिलकर संभाले। खंड एक, आज पानी है लेकिन कल। अरे अरे सुजल, जल्दी आओ, पानी आ गया।
2: आ रहा हूँ, लेकिन इतनी खुशी क्यों? अब तो हमारे गांव में नल से पानी आना कोई नई बात नहीं।
0: नई बात नहीं है, पर अच्छी बात की खुशी रोज भी मनाई जा सकती है ना।
2: अरे बाल्टी तो भर गई, नल बंद करो।
0: हाँ, अरे अरे ये नल बंद ही नहीं हो रहा। तो बहने दो ना। ये आवाज
2: और कौन? दूषिका।
3: बिल्कुल, पानी आ रहा है, बाल्टी भर गई है, थोड़ा बाहर बह गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा?
2: पहाड़ नहीं दूषिका, लेकिन अगर हर घर यही सोचे तो पानी जरूरत कम पड़ जाएगा।
3: अरे वाह, इतना पानी धरती पर है, इतनी बारिश होती है और तुम दो चार बाल्टी के लिए परेशान हो।
0: सुजल, इसकी बात सुनकर मेरे मन में भी एक सवाल आया, देखो ना।
2: पूछो।
0: हम हमेशा कहते हैं पानी बचाओ, लेकिन हमारे नल में पानी आखिर आता कहाँ से है?

0: बस आज की कहानी यही से शुरू होती है। घर में लगे नल से नहीं, उस जगह से जहाँ ये हमारे गांव का पानी आता है,
1: यानी हमारा जल स्रोत।
0: बिल्कुल।
2: उफ, अब ये दोनों मुझे कुएं, तालाब और बोरवेल घुमाएंगे।
0: और तुम्हें भी चलना पड़ेगा।
1: खंड दो, नल के पीछे की कहानी।

0: खंड 4 मेरे अकेले से क्या होगा। सच बताओ सुजल, ये बात हम कहीं जगह कहते हैं। एक नल टपकने से क्या होगा, एक बाल्टी बहने से क्या होगा, मेरे अकेले जल सेवा शुल्क न देने से क्या होगा, मेरे अकेले जल स्रोत की देखभाल न करने से क्या होगा।
1: और इसी क्या होगा में छोटी छोटी लापरवाहियां जुड़ती जाती है।
0: अब आई ना स्वच्छिका, अब आई ना मेरे लाइन पर। पूरी बात तो सुनो, एक आदमी की लापरवाही छोटी लग सकती है, लेकिन पूरे गांव की जिम्मेदारी बहुत बड़ी ताकत बन सकती है।
1: एक घर पानी बचाए, दूसरा लीकेज बचाए, कोई जल स्रोत की रक्षा करे, कोई समय पर सेवा शुल्क दे, पानी समिति हिसाब रखे, पंचायत समय पर समीक्षा करे, ऑपरेटर योजना की नियमित देखभाल करे और ग्राम सभा मिलकर पूछे हमारे गांव की जल सेवा कैसी चल रही है,
0: तभी नल सिर्फ आज नहीं
1: कल भी चलेगा,
0: गर्मी में भी
1: और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी।

0: खंड 5 गांव का 5 सवालों वाला जल संकल्प। तो आज रेडियो सुन रहे हर गांव से हम 5 सवाल पूछे।
1: पूछो।
0: पहला, क्या हमें पता है कि हमारे नल का पानी किस स्रोत से आता है?
1: दूसरा, क्या हमें अपने जल स्रोत को साफ, सुरक्षित और जीवित रखने के लिए कुछ कर रहे हैं?
0: तीसरा, क्या गांव में कहीं पानी बेवजह बह रहा है या लीकेज है?
1: चौथा, क्या हमारी जल योजना की मोटर, टंकी, पाइपलाइन और वॉल्स किस

0: समय पर देखभाल हो रही है।
1: और पांचवा, अगर कल पानी की सप्लाई में समस्या आए तो क्या हमें पता है किसे बताना है और क्या करना है?
2: बस बस बस, ये सवाल हर गांव ने पूछ लिए तो मेरा क्या होगा?
0: वही होगा जो होना चाहिए,
1: तुम्हारी छुट्टी।
0: दोस्तों, आज कार्यक्रम सुनकर सिर्फ पानी बचाना चाहिए मत कहिए, आज ही एक काम कीजिए।
1: अपने परिवार के साथ पता कीजिए आपके घर में नल में आने वाला पानी आता कहाँ से है,
0: और अगली ग्राम सभा या पानी समिति की बैठक में एक सवाल जरूर पूछिए। हमारा जल स्रोत आने वाले 5-10 साल तक सुरक्षित रहे, इसके लिए हमारे गांव क्या कर रहा है?
1: और अपनी गली में एक बार देखिए, कहीं नल टपक तो नहीं रहा, कहीं पाइप से पानी बह तो नहीं रहा, कहीं टंकी से पानी बेकार तो नहीं जा रहा।
2: अरे अरे, रेडियो बंद करो, वरना लोग सच में देखने निकल पड़ेंगे।
0: यही तो चाहते हैं हम, स्रोत बचेगा
1: तो पानी रहेगा,
0: पानी बचेगा
1: तो हर घर जल चलेगा,
0: और योजना संभलेगी तो गांव का कल सुरक्षित रहेगा।
2: और मैं
1: तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है।

0: स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के अंक तीन में हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब और सही जवाब देने वाले श्रोताओं के नाम अब हम बता देते हैं। तो तोही तड़वी पाल तालुका रावेल जिला जलगांव से इन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया है। दूसरे हमारे श्रोता है भूसावल से प्राध्यापक जयेंद्र लेकुर वाले। तीसरे हमारे श्रोता है समृद्धि पाटिल भूसावल से।
1: अब इस बार का सवाल है, आपके गांव के नल में पानी किस जल स्रोत से आता है और उस स्रोत को बचाने के लिए आपके गांव में क्या किया जा रहा है?
0: हमें चिट्ठी संदेश अपने रेडियो मनभावन कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जरूर बताएं। आपके गांव का अच्छा काम हम दूसरे गांवों तक भी पहुंचाएंगे। हमारा संपर्क क्रमांक है 9284499433। हमारा क्रमांक पुनः
1: 9284994433। इस नंबर पर हमें जरूर संपर्क कीजिए, क्योंकि एक गांव का अच्छा काम
0: दूसरे गांव का रास्ता बन सकता है।
1: नमस्कार।